माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई ज्यों तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पात साहौ साहा पात साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए।

मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रिपतासा है, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मैं जंत उपाए। ताका रिजक आगे कर तरिया, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोय न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करिया। उडे उड आवे सह कोसा, तिस पाछे बचरे शरिया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन मह सिमरन करिया। सब निधान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया। राग आशा महला चौथा, सो पुरख एको ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम अपारा। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावह संतोह जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर।

जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी। से मुकत भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ।

हर रूप समासी। सेतन सेतन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी। हर

तप तप है जप है बेअंत तेरे अनेक, तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत पहले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद

है सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मेंडा साई। जो तौ पावै सोई थीसी, जो तू देहे सोई हों पाई। रहाओ

जन जाणै हर गुण सद ही आख वखाणै जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया।

जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सर वरड़ै पहिले निवासा, पानी पावक तिन्हें किया पंकज मोह पाग।

श्री अस तुझ जो करे हौ रक्षा। राख लेहो मोहे राख नहारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा।

तुम्हारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर यस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, कट कट के पट पट की जान। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आकर्ख

गुड़ उचारत पेता, जाको पेव ना पावत बेता। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश्यपेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो है।

रूप सरूपा रंक पहयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज किनी उत पूज खान बहुर राच दिनी। कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचम

सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारण।

तिस साहिब की पेक नानक मन माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जी। अरदास एको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार। श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे हैं कर नानित आवे ताए। सब थाई हुई सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुई सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। हे निमाणिया दे माण नितानिया दे तान ओटिया दी ओट सच्चे पिता धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ। आप जी का कोटान कोट धनवाद है पातशाह जी। आप जी ने अमृत वेले तो खुले दर्शन दीदारी बख्श के निहाल किया है जी। इस वेले दीवाना की संपूर्णता तो उपरंत आप जी के स्वरूप के सुख आसन की सेवा हुई है पातशाह जीओ। सोहेले साहब जी के पाठ होए हैं बाणी पढ़द्या तो सेवा करद्या तो आप जी की हजूरी विच विचरद्या तो हुई गलतियां भुलों की मुआफी बख्शनी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी बाणी का भाव दराइया संगतों के हिरद्या वसाउणा दर आई संगत की हाजरी तिल फुल भेटा दर प्रवान करने अपने दरों घरों सिखी सिदक नाम भरोसे दात बख्शिश करनी पातशाह जीओ। चार पहर दिन आप जी के पाने में सुख न बतीत होया है। चार पहर रहन आप जी अपने पाने में बतीत करवाना। इस वेले आप जी का सुख आसन तैयार है। आप अपने आसन से विराजमान होवो। सेवकां संगतां खुशियां बख्शो। अमृत वेले खुले दर्शन दीदारे बख्श के निहाल करना सही प्यारे मिलना जिन्हां मिले आप जी का नाम चित आवे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

नाथ तेरा को न सुजानू, हर का नाम तह नाल पहचानू। जय महा भयान तपत बहु काम, तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम। जहा त्रिका मन तुझ आ कर कह, तह नानक हर हर अमृत बरख। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना कह मन विश्राम। हर का नाम दास की ऊट, हर कह नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन कह हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। मन तन रंग रते रंगे कै, नानक जन कै बिरत बिवेकै। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कै नाम जन को तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन कै मालक जीना, हर तन जन कुआ प्रभ दीना। हर हर जन कै उठ सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बह करे, नानक जन संकेते तरे। पार जाते हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लत्था। नाम की महिमा संत रिद्वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन को। इस लोक

हस्त पाव करनी तरसना तिसह त्याग वर संग रचना ऐसे दुख मुडंद व्यापे नानक काढ लिहु प्रव्यापे आदंत जो रख नहार तिस्यों प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नव नित पावे तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सत सदा हजूरे ताकु अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दर कह मान तिसे बिसारे मुग्ध अजान सदा सदा भूलन हार नानक रखन हार अपार तुम त्या कौटी संग रचै सा छोट झूठ संग मचै जो छिडना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्द प्रीत भस्म संग होए अंधकूप मैं पतत विकराल नानक काढ लिहो प्रभ दयाल कर तूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर पेख अंतर मलमाया छिप सुनाए किच करै छिपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन स्वाहा गल पात्र कैसे तरह थाहा जाके अंतर वसै प्रव्याप नानक तेजन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गहले ओढ़ निभावै कहाँ बुझारत बुझै डोरा निष्कहिय तो समझै पूरा कहा विष्णु पद गावै गुंग जितन करै ताओ भी सुर भंग कह पिंगुल पर्वत पर भवन नहीं हो तू हाँ उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय सुहावै न चीत जो वैराई ता सो प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसै अनद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मानै मने प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ ध्रोह आहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिहु अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जीव पिंड सब तेरी रास तुम आत पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हुए सुआग्याकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास दा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभ छूट कै लागह आन सुआए नानक कहू न सी जई बिन नावे पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त कारण विकोट गवावे एक पी न दे दस पीर ले तो मूड़ा कहु कह करे जे ठाकुर स्यो नाही चारा ताको की जय सद नमस्कारा जा कैमन लागा प्रमीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा जिचने अपना हुक्म नाया सर्व थोग नानक तिन पाया अगंत सब अपनी देरास खात पीत बरतैन दुलास अपनी अमान कछ बहुर साहुले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुर उसका विश्वास न होवै जिसकी बस्ती से आज्ञा राख्या प्रभु की आज्ञा मन है मत है उसते चौगन करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल निक भांत माया के हेत सरपर होवत जान अनेत बिर की छाया स्यों रंग लावै उ बिन सह मन पछतावै जो दिसै सो चलन हार लपटरे उतै अंध अंधार बटाऊ स्यों जो लावै नेहि ताको हाथ न आवै के मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया मिथ्या

स्वाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार कौता वह मिथ्या मन पर लोभ लुभा वह मिथ्या तन पर उपकारा मिथ्या बास लेत बिकारा बिन बुझे मिथ्या सब पय सफल दे नानक हर हर नाम लय बिरथी सागत की आर जा साच बिना कहूत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बृथा बिहाई मेघ बिना ज्यो के ती जाए गोविंद भजन बिन ब्रथे सब काम ज्यो कृपन के निरार्थ दाम धन धन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ नानक ता कह बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर कमावत मन ही प्रीत मुखो गंडलावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर भेख न काहू पीन अवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन्मै मरै जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नान कुंजन चरण पराता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जानै अपना किया आप मानै आप है आप करत नबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा पाव सियान सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस पावे तिस लय लड़लाए थान तनंतर समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी।

तह सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचर्ज कथा अष्टपदी। साध के संग मुकुजल होत, साध संग मल सगली खोत, साध के संग मिटै अभिमान, साध के संग प्रगटै सुज्ञान, साध के संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सबूत नबेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा भरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा ब्रह्मा ही सुम्बानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ल, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस कुंचा, साध संग हुए सब की रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कतु तावे, साध संग स्थित मन पावे, साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन समीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस स्यों नहीं बैर, साध के संग ना बीगा पैर, साध के संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध के संग ना ही हों ताप, साध के संग तजै सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नान साध प्रभु बने आई, साध के संग ना कबू तावै, साध के संग सदा सुख पावै, साध संग बस्त गोचर लहै, साधु कै संग अजर सह, साध के संग बसै थान उच्चै, साधु कै संग महल पहुँचै, साध के संग दिड़ै सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान, साध के संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय कर सेवा, साधु के संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्व थान गम, नानक साध के संग सफल जनम, साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल, साध के संग कलुकत हरै, साध के संग नरक पर हरै, साध के संग यहाँ उहाँ सुहेला, साध संग विचरत हर मेला, जो इच्छै सोई फल पावै, साध के संग न बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक कुदरै साध सुन रसै, साध के संग सुनो हर नाऊ, साध संग हर के गुण गाऊ, साध के संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध के संग लगै प्रमीठा, साधु कै संग घट घट डीठा,

ज्ञान को अपर सकल निस्तार अष्टपदि मिथ्या ना ही रस न परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रै रूप न पिख नेत्र साध की टैर संसंग हित कर न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद विख्या पर हर मन की वासना मन ते टरै इंद्री जित पंच दोग ते रहत नान कोट मध्य को ऐसा परस वह सुन सो जी सुप्र सुप्रसन्न विष्ण की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हो वह नहीं कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग्राचे मंत्र यंत्र सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानको वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजय सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मलख हुवै तिस भगवती की मत उत्तम हुवै भगवंत की टहल करै नितनीत मंत्र अर्पै विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबुद्धै राम नाम आत्म में शोधै राम नाम सारस पीवै पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो नयावै वेद प्राण सिमरत बूझै मूल सूखम मैं जानै स्थूल चौवरना को देव उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना में जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए सासु पावै जन कोए कर कृपांतर उतारै पस प्रेत मुक्त पात्र को तारै सर्व रूप का उकद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहु जुगत गित न पाइय धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करम जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिसने धरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सूझी परे सगल संग आत्म दास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा तुम हितावै जीवन मुख सो कहावै तैसा हरक तैसा सोग सदानंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उसमाटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताय साई जुगत नानक को पुर कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ जित जित घर राखै तैसा तिन आऊ आपे करन करावन जोग प्रभावै सोई पुन होग पसरेउ आप होय अंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पार अवार नानक रचना प्रवरची बहु विध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तुपिसर होते कई गोटा तुम ध्यान धार है कई कोट कबका विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते कंत न पावै कई कोट पै अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिगातम निकोर कई कोट पर दर्व को हिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रम माहे कई कोट प्रदेश पर माहे जि जिद लाभ तिथ लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सुरभ उपाय कई कोट पात्र वृख ने बजाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्यर सूर्य नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूतार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत अर्शास्त्र कई कोट की रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिरजीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जग की नर पिशाच कई कोट भूत प्रे सुकर मृगाच सब ते नीरै सबू ते दूर नानका पलिप्त रहा भारपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म जी वह मरै कई कोट बोजोनी फिर है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट काल थक पाहे कई कोट गिये तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय पाणा तह तह राखे नानक सब किश प्रभ कह हाथे कई कोट भय वैरागी राम नाम संग तिन निविलागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिन को मिलो प्रभ अविनाश
कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुआ सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन।

कई कोट कीने बपात प्रभते हुए प्रमा समाता कंत न जाने कुए आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवता तुम प्रगास कई कोट तत के बेते सदा निहार कु नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर भये साध साध ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे अपने जन को साथ साथ संभारे नानक ए परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभे कह दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहार नै जल तल मही अल सोय अष्टपदी करण करावन करने जोग जो तिस भावै सोई हो किन मैं थाप थापन हार अंत नहीं किछ पारा वारा हुक्मे धार धर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे निक रंग प्रकार कर कर देखै अपनी वडियाई नानक सब मैं रहा समाई प्रभावै मानुगत पावै प्रभावै ता पात्र तरावै प्रभावै बिन शास्ति राखै प्रभावै ता हर गुण भाखै प्रभावै ता पत उधारै आप करै अपन विचारै दुहां श्रिया काप स्वामी खेलै विकसै अंतर जामी जो पावै स्वीकार करावै नानक दृष्टि अवर ना आवै कहो मानुक ते क्या होए आवै जो तिस भावै सोई करावै इसके हाथ होए तां सब किछ ले जो तिस भावै सोई करे अन जानत विख्या मैं रचै जे जानत अपना बचै भरमे भूला दह तिस धावै निमख माहे चार कुंट फिर आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन्ना मिले खिन मैं नीच कीट कौराज पार ब्रह्म गरीब नवाज जाका दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दह तिस प्रगटावै जाकु अपनी करै बख्शीस ताका लिखा नगन जगदीश जीव पिंड सब तिस की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगाश

होए वह बड़ राजा, कबहू भिखारी नीच का साजा। कबहू अपकीर्त मह आवे, कबहू भला भला कहावै। ज्यों प्रभ राखै तिव ही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहे। कबहू होए पंडित करे बख्यान, कबहू मोन धारी लावे ध्यान। कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान। कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, निक जुन पर मैं परमिया। नाना रूप ज्यों स्वागी दिखावै, ज्यों प्रभावै तिवै नचावै। जो तिस भावै सोई होए, नानक दूजा वर न कोए। कब हूँ सा संगत उपावै, उस स्थान ते बहुर न आवै। अंतर हुए ज्ञान प्रगाश, उस स्थान का नहीं विनाश। मंत्र नामृत एक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना।

किया। नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतराज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत विष्टा का जंत। आपस को करवंत कहावे, जन्म मरे भोजन प्रमावे। तन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक यह मुक्त आगे सुख पावे। धनवंता हुई कर गर्भावे, तिन समान का संग न जावे। बोल कर मानुक ऊपर करे आस, पल भीतर ताका हुए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत, किन में हुए जाए पसमंत। किसे न बदया अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुवारी। गुरु प्रसाद जा का मिटे अभिमानु, सो जन नानक दरगह परवान। कोट कर्म करे अवतारी, श्रम पावे सगले बिरतारी। इनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर फिर अवतार। अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगह को कैसी गवे। आपस को जो भला कहावे, तिसे भलाई निकट न आवे। सर्व की रेंजा का मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाना मुझते कछ होए, तब इसको सुख नाही कोए।

तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभु कृपा ते बंधन टूटै, गुर प्रसाद नानक हो छूटै। सहस खटे लाकोट तावै, तृप्त न आवै माया पाछै पावै। इनक भोग बिकिया के करै, न तृप्तावै कप कमरै। बिना संतोख नहीं कूरा जय, सुपन मनोरथ बिरथे सबका जय। नाम रंग सर्व सुख हुए, बड़भागी किसे प्राप्त हुए। करण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। करण करावन करण हार, इसके हाथ कहा विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभु सोए। जो किछ कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबु कै संग। बूझे देखे करे विवेक, अपै कपै अनेक। मरै न बिन सह आवै न जाए, नानक सद ही रहा समाए। आप उपदेश समझे आप, आपे रचिया सब कै साथ। आप किनु अपन विस्तार, सब कछु उसका करने हार। उसते पिन कहो किछ होए, तांत नंतरे कै सोए।

सचु सचु सच सब कीना कोट मध्य किन बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप व सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुन

कदी। संत कै दुखन आर जा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हते को रखै न कोय, संत कै दुखन थान भ्रष्ट हुए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भीतरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग जून लवै, संतन कै दुखन सर्प जून पाए, संत कै दुखन त्रिगत जून किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा में जलै, संत कै दुखन सब को चलै, संत कै दुखन ते सब जाए, संत कै दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाव को नाही, नानक संत भावै तावै भीगत पाए, संत का निंदक मात ताई, संत का निंदक किंटिक न पाई, संत का निंदक महत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत पावै ता उसका भी हुए मोख, संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लाग गए, संत के दुखी को सब त्याग गए, संत का दुखी मा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख न सुख ते टरे, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत भावै ता ले मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटे, संत का दुखी कितै काज न पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर दे तोता, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाहि, अपन बीजा पे ही खाहि, संत के दुखी कवर न राखन हार, नानक संत भावै ता लै उभार, संत का दुखियों बिल लाए, ज्यो जल बिहुन मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यो पावक इंधन नहीं थरापै, संत का दुखी छुटै केला, ज्यो वाड़ तिलकित माहि दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सदमिथिया कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस भावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिलै सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरै न जीवाई है, संत के दुखी की पुजै न आसा, संत का दुखी उठ चलै निराशा, संत के दुख न तृष्टै कोई, जैसा भाव है तैसा कोई होए, पया कृत न मिटै कोई, नानक जानै सच्चा सोए, सब कर तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, सहते आवो सास विरास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना केला करने हार, दूसर कौन कहे विचार,

0: जिन जने अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर सब पाप मिटावे, वर स्यान सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न हुवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। श्लोक
1: सतपुरख जिन जानिया, सतगुरु तिस का नाओ, तिसके संग उतरे नानक कर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सेकी करे प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सेकी गुर धर्मत महिरे, गुर बचनी हर नाम चरे, सतगुर सेके बंधन काटे, गुर का सेक बेकार ते हाटे, सतगुर सेको नाम तंदे, गुर का सेक बड़ पागी है, सतगुर सेका हल्त पल्त सवारे, नानक सतगुर सेको जी नाल समारे, गुर के ग्रह सेवक जुरे, गुर की आज्ञा मन में सहे, आप तो कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे, मन बेचे सतगुर के पास, ते सेवक के कार्य रात, सेवा कर हुए ने कमी, तिसको हो प्रभु स्वामी, अपने कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मतले, बीस बिसरे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर चिरदे अरनाओ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्वनिधान की का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रहता, ब्रह्म में जन जल में पार ब्रह्म, एक आप नहीं के परमु, साय से आण तैयार न जाइए, नानक ऐसा गुरु पागी पाइए, सफल दर्शन पेख पनीत, परचरण कतर मरीत, पेट संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म के दर्गे गवे, सुन कर बचन कर न गाने, मन संतोख आत पत्याने, पूरा गुर आख्यो जा का मंत्र, अमर दृष्ट वेखे हुए संत, गुण बेंत कीमत नहीं पाए, नान जिस पावे ते लै मिलाए, जे पाए उस्तत नेक, सातपुरख पूर्ण विवेक, काहू बोल ना पूछ प्राणी, अगम गोचर प्रभु निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि किम कलेन पाई, अन भगत बंधन इत करे, चरण कमल हृदय सवरे, सद बलिहारी सद गुरु अपने, नानक जी प्रसाद ऐसा प्रभु अपने, विवरस पावे जन कुए, अमृत पीवे अमर सोए, उस पुरख का नाही करे बनास, जा के मन परगटे गुणतास, आठ पैर हर का नाम ले, सच दे सेवक को दे, मुह माया के संग न लेप, मन में रखे हर हर एक, अंधकार दी प्रकाशे, नानक परमु दुख तैनासे, तौत मैं ठांड वरताई, अंध पया दुख नाठे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्व से पौ चुका निरपोए बसे, सगल व्याध मानते खैन से, जिसका सा तिन कृपा तारी, सासन जप नाम रारी, तित पाई चूके परम गौण, सुन नानक हर सच सरवण, निर्गुण आप सरगुण पी हुई, कड़ा तार जिन सगली हुई, आपने चित प्रभा बनाई अपने कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोई सर्ब निरंतर एको सोए ओस पूत रव्या रूप रंग पै प्रगास साध कै संग राच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलिहारी सलोक साथ न चाले बिन भजन विखिया सगली शार हर हर नामक मावना नानक्यो संसार प्री संज ना मिल करो विचार एक सिमर नामदार अवर पाव सामीत बसारो चरण कवन हृदय में उतारो करण कारण सुप्रसुरत दृढ़ कर गौ नामरत यो तन संचो हो भगवंत सांजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माए सर्व रोग नानक मिट जाए जिस धन को चार कुट तावे सो तन हर सेवा ते पावे जेसो को रित बाचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जे सुबा को करे पढ़ी करनी सा सुबा पाजर की सरनी अनुक पावी रोग न जाए रोग मिटे अरव खदलाए सरमदान में हर नाम निदान जप नानक दर के प्रवाण मन प्रभु दो हर के नाए दै दिताव आविठाए ताको बिघन न लागे कोई जा कर दे बसे सोए काल साती ठंडार ना सिमर सिमर सस पाओ पो बिन से पूर्ण हो आस भगत पाए आत प्रकाश तित कर जाए बसे अबनासी कहो नान काटी जंपासी तात विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचू काचा आवागमन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म का वे उदार हर हर सिमर प्राण दर अणक पाप न छूटन हारे सिमर साध वीर बिचारी हर की भगत करो मन लाए मन बचत नानक पल पाए साग न चाल तेरे तना तो क्या लुटावे मूर्ख मना सोत मीत टंबर बनता इनते कहो तुम कब सुना था राज रंग माया विस्तार इनते कहो कौन छिटकार आश्वस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ पसारी जिन दिए तिस बुझे न बिगड़ना नाम विसार नाट पिछड़ना गुर की मातू ले याने भगत बनावो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कवल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाए आप जपो अवरा नाम जपाओ सुनत कहे अरैस कर पाओ सार पूत सत कर को नाओ सहज सपाई नान गुण गावत तेरी उतर समैल बिरस जाए हौमे बेफैल ओहे चिन बसे सुख नाल साथ ग्रास हर नाव स्वाल शाड स्याण सगली मना सास पावे सतना हर पूंजी सच करो विहार इहा सुख दर की जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख। एको जाप एको सलाहे, एक सिमर एको मनाहे, एक अस्के गुण गाउ अनंत, मंत्र जाप एक ओन एको एक, एक हरियाप ओन ओ रो प्रव्याप, अन के विस्तार एक ती पहे, एक रात प्राग गए मंत्र अंतर, एक प्रवृत्ता गुर प्रसाद नानक जाता। फिर तो प्रभ आया पर्या तो सरनाई, नानक की प्रभ बेनती कपड़ी भक्ति लाए।
0: अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रभदान, कर कृपा देवो हर नाम, साध जना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावों, सास सास प्रभु तुम्हें त्यागों,

प्रभु की दृष्टि महासुख हुए, हार रस पावे बिरला कुए, जिन चाख्या से जन तृप्ताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सुपार परे प्रेम रस रंग, उपजै चाहु साध कै संग, परे शरणान सब त्याग, अंतर प्रगा संदिन लिवलाग, बिड़भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेव के मनसा पूरी पही, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन भया, जन्म मरण दुख भ्रम गया, इच पुन्नी सरधा सब पूरी, रब रहया सदसंग हजूरी, जिसका साथ इन लिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए, सो क्यों बिसरै जे काल न भानै, सो क्यों बिसरै जे की आ जानै, सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जे अगन महराखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै, सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै, गुरपूरै तति है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत कर हुए हुकाम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपहु अवरह नाम जपावो, भगत पाए करिए संसार, बिन भक्ति तन होसी चार, सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूटत जात पाए बिसर।

जाओ, मंथन अंतरे ही सुआउ, नेत्र पेख दर्श सुख हुए, मन बिकसै साध चरण तुए, भगत जना कै मंथन रंग, बिरला को पावै संग, एक वस्त दी जय कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्ब समाए। प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वच्छल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आदि गुर कारण करतार, भगत जिन्ना के प्राण आधार, जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत, हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए, अनिक राज भूप बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, भो भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत, भली सु करनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, सा संग

जब अकार्य कच न दृष्टिता। पाप उन तब कहते होता जब धारी अपन सुन समाद, तब वैर विरोध किस संकमात, जब इसका वर्ण चिह न जापत। तब हरख सो कह किस व्यापत, जब आपन आप पार ब्रह्म, तम ओ का किसोवत भरम, अपन केला वर्ती जा नन करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त कौ किस कौ गनी, जब कह हर अगम पारु, तब नरक सुर कौ कौन अवतारु। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए, जब आप है आप अपनी ज्योत रहे, तब कवन निडारु कवन कत डरे, अपन चलता अब करने हार, नानक ठाकुर अगम पार। अविनाशी सुख अपने आसन, तै जन्म मरण कहो कहा विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किसोए। जब अविगत गोचर प्रभिका, तब चित्रगुप्त किच पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन गोचर गाते, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप आपिय चर जा, नानक आपन रूप आपिय पर जा, जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन को मान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश, तह चल छिद्र लगत को की, जय जो स्वरूपी जो संग सुमावे, तह किसह भूकवन तृप्तावे। करण करावन करने हार, नानक करते काना ही सुमारु, जब अपनी शोभापन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कलाया पै परवीन, तै वेद कतेव कहा कूचीन। जब अपने आप आपुर तारै, तो सगन आप सगन कहा विचार है। जय अपन उचापन आप नेरा, तै कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानो आप। जय अचल छेद भेद समाया, ऊहा किसे व्यापत माया। आपस को आप है आदेश, त्यो गुण का नाही प्रवेश। जय कै एक भगवंता, तै कौन चित किस लागे चिंता। जय अपन आप पतियारा, तै कौन कथे कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊच ते उच्चा, नानक आपस को आप है पहुँचा। जया प्रचियो प्रपंचकार, त्यो गुण में किन्नो विस्तार। पाप पुन तै पई कहावत, को नरक को सुर्ग बंचावत। आल जाल माया जंजाल, हम मैं मुँह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की, ओ बखियान अपन के लाभ कर देखे। खेल संकुच है तू नानक कह, जय अविगत भगत है आप। जय पसरै पासार संत प्रताप, दुह पाका आपे धनी, उनकी शोभा नुहु बनी। आप है कौत कर आनंद चोज, आप है रस भोगन निरजोग। जिस भावै तिस अपना लावे, जिस भावै तिस खेल खिलावे। बेसुमार अथाह अगंत अतुल, ज्यों बुलाव।

अष्ट पदी। आप कथै आप सुन नहार, आप हैक आप विस्तार, जात स्वभावै तां सृष्ट उपाई, आपने भान ले समाई, तुम ते भिन्न नहीं किछ होए, आपन सूत सब जगत परोए।

नाथ को नाथ। जिस राखै तिस कोई न मारै, सो मुआ जिस मनो बिसारै। तिस तज अवर कहा को जाए, सब सिरेक निरंजन राय। जी की चुगत जा कै सब हाथ,

आलो अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहु व्याप प्रतपालय जीन भव पात जो जो रचियो सुत सहत आत जिस पावे तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण।

लाल रतन सुनत कमावत होत आधार। आप करै लोक कै निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग। जय जय शब्दन आहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभु का जय प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक पुदरे तिन कै साथे। शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभाव मिलाए मिटके पैर भई सबरे नम्रत नाम सा संग लैन। सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेवाल जंजाल विकार तेरे ते राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निभे के हमारी प्रभ की उस्तद करो संत मीर सावधान एकाग्र चीत। सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सुहोत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते उच पाए स्थान बहुर न हो वै आवन जानु हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रगाश सब कैमत सगल तेउदा सुंदर चतुर तत् का वेता समदर्शी एक दृष्टेता। ए फल किस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एहो निदान जपै मन कोए सब जुग मैं ताकी गत होए। गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम। गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध सा संग मिटै। संत कृपा ते जम ते छुट्टै जा के मस्त कर्म प्रपाए सा सर नानक ते आए। जिस मन बस

लभ देहे तत्काल उधारे। निर्मल शोभा अमृता की बानी, एक नाम मन माहि सुमानी। दुख रोग बिन से पह परम, साध नाम निर्मलता के।

मणि सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कथना कथि न आवे कोट, कथ कथ कथि कोटि कोट कोट, देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंत्र खाही खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विगसै वे प्रवाह, साचा साहिब साच नाए, पाखिया पाओ अपार, आख है मंग है देह देह, दात करे दातार, फेर के अगै रखिए जित दिसै दरबार, मोहौ के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक एवै जानिए सब आपे सचियार, थापिया न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेवया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर लै जाए, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहया समाई, गुर ईसर गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई, जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई, गुरा एक देहे बुझाई, सब ना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, तीर्थ नावा जे तिस पावा, विण पाणे के नाए करी, जेती सिरठ उपाई वेखा, विण कर्मा के मिले लई, मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए, चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना आवई तवात ना पुछै के, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे, सुनाए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनाए धरत तवल आकाश, सुनाए दीप लो पाताल, सुनाए पोहे न सकै काल, नानक भगता सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नास, सुनाए ईसर बर्मा इंद, सुनाए मुख सालाहन मंद, सुनाए जोग जुगत तन भेद, सुनाए शास्त सिमरत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नाश, सुनाए सात संतोख ज्ञान, सुनाए अठसठ का इशनान, सुनाए पढ़ पढ़ पावै मान, सुनाए लागै सहज ध्यान, नानक भगतां सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नास, सुनाए सारा गुणा के गाह, सुनाए सेख पीर पातशाह, सुनाए अंधे पावै राहो, सुनाए हाथ होवै असगाहो, नानक भगतां सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नास, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछुताए, कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मान कोए, मन्ने सुरत होवे मान बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध, मन्ने मोहे चोटा ना खाए, मन्ने जम कै साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से ती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने पावै मूख द्वार, मन्ने परवारै साधार, मन्ने तरै तारी गुर सेखो, मन्ने नानक पावै है ना पेखो, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए,
पंच परवान पंच प्रधान पंचे पाव है दरगा है मान पंचा सो है दर राजान पंचा का गुर एक त्यान जे को कह कर विचार करते कह करण नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तबलै ऊपर केता पार धरती होर पर होर होर तिस ते पार तलै कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया गुड़ी कलाम ए हो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सवाले हो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भख सार असंख मोन लिव लाए पार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख काहे सिर भार होए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे तिस सिर नाहे जेव फुर माए तेव तेव पाहे जेता कीता तेता नाउ विण ना वै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरिय हाथ पैर तान देह पानी धोता है उत्तर सोखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइय ओह धोए भरिय मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवाहो जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए वैण गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आत बाणी ब्रह्माओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति महा कवन जित होआ आकार वेल न पाया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान थित वार ना जोगी जाने रुत माह ना कोई जा करता सर ठीकौ साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सा लाही क्यों वरने केव जाना नानक आखण सब को आख एक दू एक सियाणा
ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ, ਅਗੈ ਗਾਇਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ। ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖੋ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ, ਸਹਿਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਿਣ ਕਤੇ ਬਾ ਅਸੁਲੋ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲਿਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਹੈ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨ ਹੋਣਾ ਵਿਸਰਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ, ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ, ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕਿਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਤੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟੈ ਵੇਕਾਰ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਿਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾ ਸਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੋਹੇ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖੈ ਸੇ ਭੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਬਾਣ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪਰਵਾਣ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਣ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੀਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕ ਹੈ ਕੇਈ ਕੇ। ਜੀਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇ ਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕਿਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉਂ ਕਹੀਐ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਤੁਹਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਇੰਦ ਇੰਦਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗਾ ਮਸ਼ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ, ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਾਚੋ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ,
है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेखा है कीता अपना जेव ते सदी वड्याई ज्यो तिस भावै सोई कर सी हुक्म ना करना जाई सो पात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की कर है बेपूत चिंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग विजोग द्वेकार चला वह लिखे आवह पाग आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत वे आई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओ वेखै ऊना नदर ना आवै बहुता एहो विडान आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दो जी भौं लख हो हे लख हो वै लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश ए तराहे पत पवड़ियां चढ़िए हुए इकीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देन ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राजमाल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोय राती रुती थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई ओथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आख हो करम केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बर में घाड़त घड़िया रूप रंग के वेस केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मैं ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाहे जे को कहै पिछे पछुताए तिथै घड़िए सुरत मत मान बुद्ध तिथै घड़िए सुरां सिद्धां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना उहे मरहे ना ठाके जाहे जिन कै राम वसै मन माहे
ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇਲੋ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭਾਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ ਟਕਸਾ

विनय तेरा अपना आप तू जान है जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाण है आख है ता वेखा है सब तू है जिन जग तू उपाया कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीने सच्चा मन वसाया जी जंत सब तुद उपाए एक वेख परसुन आया लब लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया भगतां की चाल निराली चाला निराली भगता हां केरी बिखम मार्ग चलना लाभ लोभ अहंकार ताज कृष्णा बहुत नाही बोलना खने अहो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना गुरप्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी कहे नानक चाल भगतां जुग जुग निराली ज्यो तू चला है तिव चल है स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जेव तू चला है तिव चल है जिना मार्ग पावहे कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावहे जिसनों कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे कहे नानक सच्चे साहेब ज्यो पावै तिव चलावहे एहो सुहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सुहेला सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसया जिन तुरों लिखिया आया एक फिरै कनेरे करह गल्ला गल्ली किने न पाया कहे नानक शब्द सुहेला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यों पवित संगत सबाईया कहंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज न उपजै विण सहजे सहसा न जाए नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए सहसै जियो मलीन है कित संजम धोता जाए मन धोवो शब्द लागो हर स्यों रहो चित लाए कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एहो सहसा एव जाए जियो मैले बारो निर्मल जियो ता मैले तिन जन्म जुए हारिया ए तिशना वड़ा रोग लगा मरण मन हो वे सारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुन है नाही फिर है ज्यो बेता लिया कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिने जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिन खटिया भले सेवन जारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुर नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै होवै ता सनमुख सिख कोई जियो रहे गुर नाले गुर के चरण हृदय ते आए अंतर आत्मै संभाले आप छड सदा रहे परणै गुर बिन अवर न जाने कोए कहे नानक सुनो संतो सो सिख सनमुख होए जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै पावै मुक्त न होर थै कोई पुछो बबे किया जाए अनेक जूनी भरम आवै विण सतगुर मुक्त ना पाए।

जगत देखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ, चलत नदरी आया, कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया, जो तराखी ता तू जग मह आया, मन चाओ भया प्रभ आगम सुनया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह

कहे नानक ए नेत्र अंध से सतगुर मिले देव दृष्ट होए ए सर्वण हो मेरे हो सचै सुनणै नो पठाए सचै सुनणै नो पठाए श्री लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया होआ रसना रस समाणी साचो अलख वेडाणी ताकी गत कही न जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो सचै सुनणै नो पठाए हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए पावनी इक ना दसवां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाउ नवनिद तिसदा अंत न जाई पाया कहे नानक हर प्यार जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया।

तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिघन न को लागे जाती प्रभ अगे अरदास। एको ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाओ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे है घर नाओ निद आवै ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु

सच्चे तो दाखे लख करोड़, सच्चे सब तान सच्चे सब जोर, सच्ची तेरी सिर्फ सच्ची साला, सच्ची तेरी कुदर सच्चे पातशाह, नानक सच त्यान सच, जो मर जमे सो कच निकच महला।

0: नदरी कर्म लंग हय पार कुल चरखा चक्की चक थल वारो ले बहुत अनंत लाटू मां दाणिया अनगा अनगा पंखी पौंदिया लै नासा सुए चढ़ पवई अजंत नानक पौंदिया गणित ना अंत
1: बंधन बंद पवाए सोए पै करत नचे सब कोई नच नच हसे चले से रोए उड़ ना जाए सिद्ध ना होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिन मन पाओ पौड़ी नौ तरन कर गए।

मन की पेड़े पे कुम्यार खड़ पांडे टांकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोए उपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंग्यार नानक जिन करता है कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिल सतगुरु कन्ना पायो।

करी न होई, बलिहारी कुद तवस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ। जात मह जो जोत मह जाता, कल कला भरपूर रहा। तुम सच्चा साहिब सिर्फ

अंतर पूजा पढ़ कते बा संजम तुरका पाए छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहे तरंदा।

मत्थे टिका पेड़ धोती तो कखाई हथुरी जगत कसाई नील वस्त्र पैर होए प्रवान मले धान ले पूजे पुराना भाखे आका कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे ना जाना।

से रंग रोवे चुप पी कर जाए परवाह नहीं किसे केरी भाज सच्ची लाए। दरबाटी ऊपर खर्च मंगा

सतनाम श्री वाहे गुरु जी, दंडौत वंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक ते कर हाथ। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराहे तेहा हूं करीब ख्यान। वाहिगुरु जी, तनासरी महला पंजवां, तनासरी महला तीजा, घर दूजा चौपदे, एक ओंकार।

0: एहो धन आखुट ना निखुटै ना जाए पूरै सतगुर दिया दिखाए। वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह। आप सत्कार योग सत्संग जी मारे बख्शी की आप संगत ने बड़ी श्रद्धा पावन सहज पितर गुरबाणी आशा के वाले सपून की शरण कीते ने पर अज हुक्मनामे की कथा चार विद्वार में शरण की अरदास मारे बख्शे पितर गुरुनामे शरण किए हैं। सात श्री राज समा गुरु साहब ने आप गुरु खातर बख्शे किया है। सात श्री आप संगत ने पता है कि नौ साल सौ साल जो आप उन्होंने कंस्ट्रक्शन देख रहे हो चल रही है। सो बेअंत परिवार अपना दसवंध सफल करते हुए बेअंत माया गुरु घर दिखती है। ये सफलता वास्ते सतसंग जी वटभागे हैं। बाकी जिन्हें जिन्हें माई पाई ने अभी अपना दसवंध सफल नहीं किया उन्होंने सारे बेनती है कि जरूर बनती माया जो तुम कर सकते हो जरूर दियो गुरु घर ताकि ये जी कंस्ट्रक्शन ऐसी अभी सारे मिलकर इसमें शान शक्ति संपूर्ण कर सकीए। बाकी सतसंग तुम जड़ी बार पास हर अवसर में कर रहे हो तो आप सकता जिन्होंने घर आरंभ की पाठ कर रहे हैं फिर भाग्य हैं इन्हें भोग पैणगे 21 जून में सवेरे 10 बजे मेन हाल में। सो जिन्हें जिन्हें माई भाई ने पाठ आप आरंभ किए ने घर वो भाई रजिंद्र सिंह उन्होंने संपर्क करके अपना जो नाम तो नंबर तुम उन्होंने दे सकते हो। उन्होंने नंबर है 4087124145। आप सत्संग जी आप संगत ने बेनती है कि अज भाई साहब प्यारे मुकम सिंह जी का जन्मदिन है अभी सारे उन्होंने उन्होंने बख्शे दत्तन प्रणाम करिए उन्होंने दसाए मार्ग में कराने वास्ते असं आप भी यत्न करिए। सतसंग जी आप संगत ने बेनती है कि कल है शहीदी संत बाबा जरनैल सिंह जी की जिन्होंने साढ़े सारे दुख ने अपनी चोड़ी पा के सिखों वास्ते खालसा पंथ वास्ते गुरु साहबां दी पवित्रता वास्ते जो कुरबानी की है नाल अपने सिंघां नूं लैके प्यारे सिंघां नाल कुरबानी की असीं उन्हां नूं रूह कल नूं याद करिए और सतसंग जी वास्ते साजियां भर के उन्होंने जरूर प्रणाम करिए। सो सतसंग जी आप संगत ने बेनती है कि जो 8 नवंबर गुरगद्दी श्री गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने आम शक्त हाल के पाने गुरु जी खुशियां प्राप्त करनिया ने और भाई साहब तैयार ने सहज प्रणाम करने शुरू करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
0: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी आप जी वडभागी हो गुरु चरणा विच बैठ के हाजरियां भर के लाहे प्राप्त कर रहे हो। समा होया अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ का प्यार सहित पावन अंग 334 तो अज आप अगे श्री सहज पाठ प्रारंभ करना है। सो प्यार सहित आप जी ने हाजरियां भरनिया हैं जो संगत घर बैठ के भी जुड़िया हुई हैं। आओ प्यार सहित गुरु चरणा नाल जुड़िए पावन अंग 334 तो अज के श्री सहज पाठ प्रारंभ हो रहे हैं जी।

मद रस लैत बिकारी उरी, कर्म भाग संतन संगानी, काष्ट लुह उधारी उरी। तावत जोन जन्म भ्रम थाकी, अब दुख कर हम हारी उरी। कह कबीर गुर मिलत महारस, प्रेम

खासी निज धन ज्ञान भगत गुर दीनी तास सुमत मन लागा जलत अंब थंब मन धावत

क्या वर्त क्या स्नान, जब लग जुगत न जानी है पाओ भगत भगवान। संपै देख न हरखी है, विपत देख न रोए,

अभिगत समझ आना, जत जत देखो बाहर न पेखो, संग माया लपटाना रहाओ, ज्ञानी ध्यानी बहु उपदेशी, एहो जग

डग मग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ संदौरा रहाओ। काम क्रोध माया के लीने, याबिद जगत बेगुता, कह कबीर राजा राम न छोड़ो, सगल ऊंच ते ऊंचा। गौरी तेरवी फुरमान तेरा सिरे ऊपर,

तब इहो नंद कहा थोरे रहाओ। संकट नहीं परे जोर नहीं आवे, नाम निरंजन जाकुरे, कबीर को स्वामी है सो ठाकुर।

आओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भए हैं एक, देखत मन पतियाही। जब

भाव। पंच पहरुआ दर में रहते तिनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चित हुए रहो तौल।

रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, गगन मंडल मह ध्याना ना, बिखै रोग पै बंधन भागे, मन निज घर सुख जा नाना, मन निज घर सुख जा नाना ना। एक सुमत रत जान मान प्रभ, दूसर मन है न आना नाना। एक सुमत रत जान मान प्रभ, दूसर मन है ना आ नाना। चंदन बास भय मन बासन, त्याग कट्यो

अगह गह गह गगन गहाई, खगा घट घट निमसै सोई, घट फूटे घट कबह न हुई, ता घट माहे घाट जो पावा, सो घट छाड़ अब घट कत धावा।

चचा रचित चित्र है भारी, तज चित्र है चित हो चितकारी, चित्र बचित्र अह अवचेरा, तज चित्र है चित्राख चितेरा, छछा यह छत्रपत पासा, छक के ना रहो छोड़ के ना आसा, रे मन मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे छाट कत आप बदावा, जज्जा जौ तन जीवत जरावै, जोबन जार जुगत सो पावै, आस जारू पार जारू जर जब रह, तब जाए जोत उजारू लह, जज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना, रहो चजक नाही परवाना, कत चख चख औरन समझावा, चगर किए

तेसो सच पावै। मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मन स्यों कह कबीरा, मन सा मिलिया न कोय। एहो मन शक्ति एहो मन सियो, एहो मन पंच तत् को जियो। एहो मन ले जो उन मन रहे, तौ तीन लोक की बाता कहे। ये या जो जान है तो दुर्मत हन कर, बस काया गाओ। रण रूतो भाजे नहीं, सूरो थारो नाओ। रा रा रस निरस कर जानिया, होए निरस सुरस पहचानिया। एह रस छाटे ओह रस आवा, ओह रस पिया एह रस नहीं पावा।

हाकिम लिव लावे तो अल्लह लह लही चरण सुमावे वबा बार बार विष्णु सुमारू विष्णु सुमारू नया वहारू बल बल जी विष्णु तना जस गावे विष्णु मिले सब ही सच पावे वाह वाह वाही जानी है वाह जाने एहो एहो आर उहु जब मिले तब मिलत न जाने कोए ससा सो निका कर शुद्ध हो घट परचा की बात निरुद्ध हो घट परचा जो उपजय पाऊ पूर रहया तह त्रिभुवन राव।

चरण कमल गोविंद रंग लागा, संत प्रसाद भय मन निर्मल, हर कीर्तन मह अन दिन जागा। रहाऊ परवा प्रीतम करो विचार, घट मह खिलै अघट अपार, काल कल्पना कदे न खाए, आद पुरख मह रह सुमाए, द्वितीया दहकर जाने अंग, माया ब्रह्म रमै सब संग, ना उह बड़ै ना घटता जाए, अकुल निरंजन एक है पहाए, तृतीया तीने सम कर लियावै, आनद मूल परम पद पावै, साध संगत उपजै विश्वास, बाहर भीतर सदा प्रगास, चौथे चंचल मन कौ गहो, काम क्रोध संकबहु न बहो,

कोई, जरा मरण दुख फेर न होए। छट खट चक्कर छहूं दिसताए, बिन परचय नहीं थिरा रहाए। दुबदा मेट खिमा गह रहो, कर्म धर्म की सूल न सहो। सातें सत कर बाचा जान, आत्म राम लिहु परवान। छूटे संसार मिट जाहे दुख, सुन सरोवर पावो सुख। अष्टमी अष्ट धात की काया, ताम है अकुल महानिद्राया। गुर गम ज्ञान बतावे भेद, उल्टा रहे अपंग अछेद। नवमी नवे द्वार कौ साद, बहती मनसा राखो बांध। लोभ मोह सब विसर जाहो, जुग जुग जीवहु अमर फल पाखाहु। दसवीं दह दिस होए आनंद, छूटे भरम मिले गोबिंद। ज्योत स्वरूपी तत् अनूप, अमल न मल न छाह नहीं धूप। एकादशी एक दिस तावै, तो जोनी संकट बहुर न आवै। शीतल निर्मल भया शरीर, दूर

उस सेवक को कोई भी दुख पौंदा नहीं जिस सेवक के सिर पर सतगुरु का हाथ होता है। सतगुरु जी बाणी च फरमान करते हैं, सब सह ऊपर नजर प्रभ तेरी, किसे है थोरी किसे है कनीरी। निगाह सतगुरु की सब दे ऊपर है, कृपा बरस रही है, पर किसी ते थोड़ी है पर किसी ते बहुत है। जिदे ते बहुत है जिदे ते सतगुरु की प्रसन्नता है, सतगुरु जी तुट के उसनों सतसंगत की दात देंदे ने, नाम की दात देंदे ने, अपना बना लेंदे ने। उस सेवक दे सतगुरु जी सारे कार्य रास करदे ने। यही नहीं, ये लोग सुखी है पर लोग